गुलाम तुम भी थे यारों, गुलाम हम भी थे। नहा के खून में आई थी फसले आजादी, मजा तो तब था कि मिलकर इलाज जहां करते, खुद अपने हाथ से तामीर गुलसिता करते।